कठपुतली बिजली से उजली बड़ी भोली तेरी दुनिया, चलने में तीर है इतनी शरीर है बड़ी जिद्दी मेरी मुनिया, गोरी जरा हंस दे तू।